अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

भर जा।

0: जय जय श्री राम
1: जय जय श्री राम
0: नमः पार्वती माता जय।

Mari Papà!

प्रस्तुत है श्री मद्भगवद गीता का सरल एवं संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। भक्त की जिज्ञासा पराकाष्ठा पर है, वह प्रभु के संपूर्ण स्वरूप के दर्शन करना चाहता है। भगवान से दिव्य चक्षु पाकर वह उस अति तेजस्वी दिव्य शस्त्रों व वस्त्रों से युक्त विशाल काय बहुआयामी स्वरूप को देखकर रोमांचित एवं कदाचित भयभीत हो उठता है।

श्री कृष्ण के विश्व स्वरूप को प्रणाम करता हुआ अर्जुन कहता है कि हे अच्युत, मैंने अज्ञानतावश आपको मित्र व सखा समझा, आपका उपहास किया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे विश्वमूर्ते, मुझ पर प्रसन्न होकर अपना चतुर्भुज रूप दिखलाओ।

जनार्दन अपना सौम्य रूप दिखलाकर प्रिय भक्त को आश्वस्त करते हैं। वे कहते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ इस स्वरूप के दर्शन किसी वेद ज्ञान, तप, दान अथवा पूजा से नहीं, अपितु मात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही हो सकते।

इस जगत का पालनहार अपने भक्तों से जैसे प्रेम करता है, वैसे ही अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है। हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन, नाम सुमिरन, उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना के अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, मगर ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शिकायत के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।

जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं।

0: वराह पर्वतमाला, तेरा उद्गम स्थान श्रृंगेरी हरिहर हम्पी, तेरे तीर स्थान धार्मिक एकता तेरा नारा, सांस्कृतिक क्षमता मंत्र प्यारा।
1: वरदा वेदवती हंद्री, वेणी भीमराती मलपहरिणी आदि पुण्य धाराओं को लेकर मुक्ति क्षेत्र में कृष्णा से तेरा संगम है कितना हृदयंगम।

तुम भद्रा, तुम्हारा नाम लेते ही 14वीं, 15वीं तथा 16वीं सदियों में दक्षिण भारत में बसे उस भूतल स्वर्ग विजयनगर साम्राज्य की याद आ जाती है, जिसकी राजविधियों में मोती पन्ने जैसी बहुमूल्य रत्न राशि बेची जाती थी। चांदी सोने से आभूषित वे राज प्रासाद, वेद उपनिषदों के अनुरणन में गुंजित मंदिर, संगीत नाट्य कला की निरंतर उपासना से महिमान्वित वे कला मंडप,

0: और हाँ, याद आ जाती है साहित्य समरांगण सार्वभौम श्री कृष्णदेव राय के सक्षम नेतृत्व में निश्चिंत प्रजा के सुख जीवन की, अपने तीरों पर पनपती सांस्कृतिक समृद्धि को गर्व से निहारती तुंगभद्रा की जलधाराओं की।
1: कर्नाटक की जनता तुंगभद्रा की उन अमृतमय धाराओं की नेति नेति प्रशंसा करती रहती है, गंगा स्नानम तुंगापानम कहकर।
0: साधारण जनता ही क्यों, बड़े बड़े विद्वान व पंडित भी तुम्हारी प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाए। विजयनगर साम्राज्य के सुविख्यात तेलुगु कवि तेनाली रामकृष्ण ने कहा,

0: इस कविता का तात्पर्य है, हे गुणभद्रा तुम भद्रा नदी, ये कैसी विडंबना है कि नदी सहज सागर संगमिचा को छोड़कर तुम कृष्ण नदी में जा मिली और अपना अस्तित्व खो बैठी। अगर सागर राजा तुम्हारे संगम सुख का पात्र हुआ होता तो वो कावेरी यमुना जैसी नदी कन्याओं का नाम तक न लेता।
1: तुंगभद्रा के पानी की वैद्य परक विशेषता कुछ और ही है, इसे बता रहे हैं सुप्रसिद्ध संशोधक डॉक्टर तिरुमल रामचंद्र।
2: రాధిని ఘంటు అనే వైద్య వస్తుగుణ కోశంలో తుంగభద్రా జలం స్వాదు స్నిగ్ధం ప్రోక్తం తథా గురు
3: ఆయుర్వేద వైద్య గ్రంథ రాజ్ నిఘంటు మే కహా గయా హై కి తుంగభద్రా కే పానీ మే స్థిత ఔషధీయ గుణో కే కారణ ఇస్కే పానీ కే నిరంతర సేవన సే అల్సర్ పిత్త దోష రక్త స్రావ జైసే అనేకో రోగ దూర్ కియే జా సక్తే హై
0: ఇన్ విశేషతాఓ కా మర్మ క్యా హై తుంగభద్రా तू बता दे, तुझ पर निशावर ये जनावास कैसे हुआ तू बता दे।
4: मेरी जलधाराओं की विशेषता का रहस्य चाहिए तुम्हें तो सुनो। हिरण्याक्ष के क्रूर बंधन में जकड़ी अपनी प्रिय सखी भूदेवी की रक्षा करने महाविष्णु वराह अवतार लिए उस दानव संघार के बाद विश्राम करते हुए विष्णु देव के दोनों खगों पर से जो श्वेत निकला वही तुंगभद्रा कहलाया, यानी कि मैं उस अवतार गाथा प्रणय गाथा की साक्षी हूं। मैं
5: अपने उद्गम स्थान कर्नाटक राज्य के वराह पर्वत की पश्चिमी घाटियों में से कदम बढ़ाती ये सरित कन्या तुंगा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पावन श्रृंगेरी क्षेत्र में श्री शारदम्बा का तथा आगे शिमोगा में शिव जी का दर्शन कर लेती है। फिर तीर्थहल्ली में परशुराम की कुल्हाड़ी से बनी घाटी के तीर्थ को लेकर कूड़ली की तरफ चलती है अपनी छोटी बहन भद्रा की प्रतीक्षा में।
6: तुंगा की छोटी बहन भद्रा समीप ही के बाबा बडून पर्वतमाला में जन्म लेकर होन्नूर को पार करती बड़ी उत्सुकता से पहुंचती है कूड़ली अपनी बड़ी बहन तुंगा से मिलने।
4: हम दोनों का वो संयुक्त रूप अभीप्सित हितदायिनी तुंगभद्रा कहलाया, हमारी इस अपूर्व एकता के प्रतीक ठहरे मेरे तीरों पर बसे विविध तीर्थ स्थान। सबसे पहला क्षेत्र है हरिहरा।
5: गुहासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा के दर्शन के लिए घोर तपस्या की थी। वर्षों बाद ब्रह्मदेव के दर्शन हुए। उसने वर मांगा, पशु पक्षी दानव मानव आखिर हर या हरि तक से भी उसे प्राण भय न होने का।

0: और तभी से ये क्षेत्र गुहारण क्षेत्र और हरिहरेश्वर भी पुकारा जाने लगा।
1: इतिहास पुराण के अलावा तुंगभद्रा भारत जाति की राजनीतिक गतिविधियों की भी साक्षी रही। भारत के स्वातंत्र प्रदाता व जाति पिता महात्मा गांधी के स्मृत अवशेष 1948 में 15 फरवरी के दिन हरिहरा क्षेत्र के तुंगभद्रा में निमज्जित किए गए।
2: हरिहरा के बाद मेरी यात्रा उस शुभंकर प्रदेश किष्किंधा की तरफ चली, जहां सीता वियोग में दुखित श्री रामचंद्र को सीता का कुशल समाचार मिला। ये वो प्रदेश है जहां समुज्ज्वल वैदिक संस्कृति के ध्वजवाहक महातपस्वी विद्यारण्य के निर्देशन में विजयनगर महासाम्राज्य की स्थापना हुई थी। धार्मिक एकता, सांस्कृतिक क्षमता और ऐतिहासिक मान्यताओं का सुंदर साकार रूप था विजयनगर। कन्याकुमारी से लेकर उड़ीसा तक तथा पूर्व पश्चिम सरहदों तक के सुविशाल भूमंडल में विस्तृत विजयनगर।
0: सुप्रसिद्ध इतिहास वेत्ता श्री कृष्ण स्वामी ने अपने ग्रंथ सोर्सेज में इसका उल्लेख किया कि विजयनगर राजा वैष्णव होते हुए भी अपने राज में अन्य धर्मावलंबी नायक तथा सेनापतियों को रखा करते थे। मुसलमानों के लिए नगर में मस्जिदें थीं।
2: विजयनगर साम्राज्य सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भी सुविख्यात था। राजधानी हम्पी संगीत, साहित्य, शिल्प, मूर्ति, स्थापत्य इत्यादि अनेकानेक कलाओं का आगार था। मुझे लग रहा था कि कुबेर की अमरावती मानो स्वयं स्वर्ग से उतर आई है वहां पर।
1: अब कुछ पर्यटकों से मिलते हैं।
3: I'm from Germany. I was told by an Israeli girl.
4: मैं जर्मनी से आया हूँ। इज़राइल से आई हुई एक और महिला पर्यटक ने मुझे हम्पी के दर्शन करने की सलाह दी। मेरे लिए यह एक अच्छा अनुभव है कि यहाँ भारतीय संस्कृति, सभ्यता व जन जीवन को नजदीक से देखने का अवसर मिला।
5: I enjoy Hampi very much because of the beautiful landscape.
1: यहाँ के सुंदर खंडहरों के बीच चलते फिरते देखना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। विजयनगर साम्राज्य के वैभव के बारे में मालूम होता कितना ही अच्छा लग रहा है। I love it.
2: लेकिन सन 1565 ईस्वी की राक्षस तंगड़ी युद्ध ने इस स्वर्ग को नरक बना दिया। मेरे ही पुत्रों के बीच राज्य लिप्सा के नागिन का विष, निर्जीव नंदन वन, धर्म के नाम पर एक दूसरे को मिटाने के प्रयत्न। इसका नतीजा क्या हुआ? यहां खड़े हुए शोकाकुल खंडहर, आज मेरी स्थिति नीरवता के बीच मौन यात्रा।
6: तुम्हारी वर्तमान विजय गाथा के बारे में पूछना तो हम भूल ही गए, तनिक बताओ तो सही।
2: जिस तरह मैंने इतिहास में प्रजा कल्याण व संस्कृति के उत्थान के लिए सभी उत्साही राजाओं को सहयोग दिया था, उसी तरह आज भी मैं आवश्यकता अनुकूल चलती आ रही हूँ। इसीलिए विकास संबंधी विविध क्षेत्रों में प्रजा को अपना सहयोग देती आ रही हूँ।
0: स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाने की परियोजना का श्री गणेश किया।

0: सन 1940 में सर आर्थर होप के हाथों कर्नाटक के होसपेट शहर से 3 किलोमीटर दूरी पर एक बृहद जलाशय का शिलान्यास हुआ
1: और 1953 तक इस बांध का निर्माण पूरा हुआ। स्वतंत्र भारत के स्वर्णिम सपनों को साकार देखने की सर्वप्रथम स्फूर्ति तुंगभद्रा ने ही दी। इस बांध से संबंधित कुछ रोचक बातें बता रहे हैं श्री सी सुब्बाराव, तुंगभद्रा परियोजना के मुख्य अभियंता।
2: मेन डैम इन मैसनरी अक्रॉस द रिवर 5,712 फीट इन लेंथ ऑफ व्हिच 2,300 फीट।
3: तुंगभद्रा बांध की लंबाई 5,712 फुट है और उस पर 2,300 फुट का पिलवे है। नदी की बाई ओर बनी नहर कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में 127 मील तक बहती है और दाई ओर बनी नहर कर्नाटक राज्य के बल्लारी तथा आंध्र के कर्नूल जिलों में 217 मील की दूरी तक बहती है, वहां के खेतों को सींचती हुई।
0: इस बांध का संपूर्ण आवाह क्षेत्र है 28,179 किलोमीटर और आज की जल ग्रहण क्षमता है
2: इन लेंथ ऑफ व्हिच 2,300 फीट इन द मिडिल पोर्शन।
3: तुंगभद्रा बांध की लंबाई 5,712 फुट है और उस पर 2,300 फुट का पिलवे है। नदी की बाई ओर बनी नहर कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में 127 मील तक बहती है और दाई ओर बनी नहर कर्नाटक राज्य के बल्लारी तथा आंध्र के कर्नूल जिलों में 217 मील की दूरी तक बहती है, वहां के खेतों को सींचती हुई।
0: इस बांध का संपूर्ण आवाह क्षेत्र है 28,179 किलोमीटर और आज की जल ग्रहण क्षमता है 133 टीएमसी फीट।
1: इस बांध द्वारा कर्नाटक के रायचूर तथा बल्लारी जिलों में 30 लाख हेक्टर की भूमि सिंचाई की सुविधा पा रही है। इस नदी के तीर प्रांतों की मिट्टी मुख्यतया लाल व काली मिट्टी है जो धान, गन्ने, मूंगफली, कपास, केले आदि के पैदावार के लिए लाभदायक है।
0: अरे हाँ, उन लहलहाते खेतों की तरफ देखो, लग रहा है कि खुशहाली के मेले लगे हुए हैं वहाँ। तुंगभद्रा की छत्र छाया में कितने खुश और निश्चिंत है वे लोग।
1: और नदी योजना की सफलता के बारे में किसानों के विचार। श्री शंकर गौट, किसान संघाध्यक्ष व पूर्व विधायक।
4: ये तुंगभद्रा डैम कटिदिंत मुंचित जिले गड़ी अनेक जन तौंदी सरिया सकाल के मा बारद्रीन इंत बेग
5: बांध बनने से पहले किसानों को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल रहा। बांध बनने के बाद किसानों को काफी सुविधा हुई और व्यापारिक फसलें जैसे कपास, मूंगफली, सूर्यकांति भी हो रही है।
1: 70 साल के अनुभवी किसान श्री एम वी नायक, एक स्वतंत्रता सेनानी तथा हरिहर नगर पालिका के पूर्वाध्यक्ष।
6: तुंगभद्रा नदी तटाकदल्लि सुमार 4-5 सक्रिय कंपनी।
7: कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा के किनारों पर भद्रावती, शिवमोग्गा, हरिहर, दावणगेरे जैसे जगहों पर चीनी के कारखाने हैं और कई लोग इससे रोजी रोटी कमा रहे हैं।
0: इस पानी का उपयोग सिंचाई के अलावा बिजली उत्पादन में तथा मछली पालन में भी किया जा रहा है।
1: श्री सुब्बाराव, तुंगभद्रा परियोजना के अभियंता।
2: एंड फॉर जनरेशन ऑफ ए हाइड्रो पावर फॉर द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 99 मेगावाट्स द प्रोजेक्ट वाज टेकन अप इन 1945 एंड कंप्लीटेड इन 1953।
3: जल विद्युत के उत्पादन के लिए 1945 में तुंगभद्रा बांध परियोजना का संकल्प हुआ और 1953 तक यह पूरा हुआ। अब यहाँ बांध के दोनों तरफ 4 यूनिट तथा 9 मेगावाट के 2 बिजली घर हैं और हम्पी के पास इसी क्षमता का एक और बिजली घर है।
0: इन बिजली घरों द्वारा उत्पादित बिजली से आंध्र तथा कर्नाटक की प्रजा लाभ उठाती है।
1: तुंगभद्रा जलाशय का

0: विस्तार 378 वर्ग किलोमीटर है, जो मछली पालन के लिए अत्यंत अनुकूल है। इस केंद्र से प्रतिवर्ष 2000 टन से भी अधिक मछलियां पकड़ी जाती हैं। आंध्र, केरल व कलकत्ते की प्रजा भी इन लाजवाब जल पुष्पों का स्वाद लेती है। सुनिए ये मछुआरे क्या कह रहे हैं। श्री कारे सत्तैया,
1: నువ్వు కట్ల మిరగాలు కావన కార్పు ఇట్ట ఉంటాయి అన్నయ్య, 64లో చేపలు పట్టి ఊర్లంట గంప పట్టుకు
2: कटला मिर्गालू जैसे तरह तरह की मछलियां यहां पर मिलता है। 64 में मछली पकड़कर टोकरे में रखकर गांव को जाकर बेचा करते थे। हमको 4 रुपया 6 रुपया 10 रुपया मिलता था, अब 20 रुपया 30 रुपया मिलता है। अब हम बच्चों को स्कूल को पढ़ाई के लिए भी भेजता है और मकान भी बना लिया है।
3: तुंगभद्रा बांध के यंत्र समूह की तैयारी में सुविधा के लिए सन 1948 में तुंगभद्रा प्रोजेक्ट वर्कशॉप तथा मशीनरी वर्कशॉप का आरंभ हुआ था। इसमें पहली बार वेल्डिंग तकनीक का उपयोग किया गया और बांध के फाटकों का निर्माण हुआ। बांध की समाप्ति के बाद सन 1967 में ये एक सार्वजनिक उपक्रम बना और धीरे धीरे इसका कार्यक्षेत्र बढ़ने लगा। आज देश के विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए ये संस्था अपनी सेवा प्रदान करती है।
0: इस वर्कशॉप के कार्यकलापों का विवरण दे रहे हैं तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक श्री एसपी त्रिपाठी।
4: कंपनी की स्थापना के समय इसके कर्मचारियों की संख्या थी 405 और अब आज 1993 में इनकी संख्या 1045 है। इस तरह कंपनी ने कई लोगों को रोजगार देने में साथ दिया। जब कंपनी 1960 में आरंभ हुई थी उस वक्त इसका उत्पादन मूल्य था 38 लाख रुपया और पिछले साल उत्पादन हुआ 33 करोड़ 7 लाख रुपये का, अर्थात स्थापना समय से आज तक के उत्पादन में करीबन 100 गुना वृद्धि। और इसका शुभारंभ हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों से ही हुआ।
5: होसपेट से आगे बढ़ती हुई मैं बल्लारी व रायचूर जिलों में से आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती हूँ। वैसे तो पुराने व आधुनिक अभियंताओं ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में बसवन्ना, रामसागर, कोरिगल, शिवपुर और गंगावती आदि बहुत सारी नहरें बनाकर मेरे पानी को उस भूखंड पर बहाया जहाँ मैं नहीं पहुँच सकती थी। इस तरह मेरे पानी की सार्थकता और बढ़ी। वैसे आगे चलते चलते मैंने कर्नूल जिले में प्रवेश किया।
0: इस नगर के एक छोर पर तुंगभद्रा नदी है तो दूसरे छोर पर तुंगभद्रा मशीनरी एंड टूल्स लिमिटेड संस्था, दोनों जीवनदायिनी हैं। इसने भारत के गौरव में 4 चांद लगाए हैं। इस संस्था के बारे में बता रहे हैं मैनेजर श्री के रामकृष्णय्या।
6: 1991 ఆర్డర్ 1993 కల్ సప్లై సంత కంప్లీట్ చేశాము। దీనికి గాను మాకు 1990-91 సంవత్సరం
7: విదేశీయ మే కదమ్ రఖనే కా గౌరవ్ హమే మిలా 1991 మే కాగజ్ ఉద్యోగ్ కే లియే आवश्यक सामग्री की पूर्ति हम करते हैं।
6: पेपर मशीन
7: इसके लिए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट काउंसिल से हमें विशिष्ट निर्यात अवार्ड भी मिला है। इसी तरह अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रीका से कागज मशीन निर्यात के लिए ऑर्डर मिले हैं। हमारे हाथ में अब 36 अरब डॉलर के ऑर्डर्स हैं।
3: कर्नूल नगर में 500 साल पुरानी सैयद शाह मियां साहब कादरी की दरगाह,

0: जाति पाति धर्म से परे मानवता के संदेश का जीता जागता सबूत। हजरत बाबा की प्रतिभामयी जीवनी व संदेशों को वहां के मौलवी सैयद शाह अनवर बाबा कादी जी द्वारा।
1: बाबा वचने दिन बगदाद शरीफ नुचे बगदाद बगदाद बरनाला बरनाला वो मुखाम
2: एकड़
1: बरनाला पंजाब बोला।
3: 500 साल पहले हजरत बाबा जी बगदाद से यहाँ पर आए थे, फिर बरनाला पंजाब जाकर घोर तपस्या की उन्होंने, वहां से फिर बगदाद होकर कर्नूल में आ बसे। अपने पास आए हुए लोगों को मानवता परोपकार जैसी उपदेश दिया करते थे वे। 40-50 साल के बाद वे समाधि में चले गए। अब भी दरगाह पर बहुत सारे लोग आते रहते हैं अपनी मन्नतें लेकर।
4: श्री मुस्तफा ने हमें बताया।
5: నా పేరు ముస్తఫా అండి, నేను తాడపత్రి నుండి వచ్చానండి. నేను నెలగా ఊతురు వస్తూ ఉంటానండి. ఇక్కడ స్వామి మహత్యం ఎక్కువ అండి. ఇక్కడ ఎవరన్నా రాని ఒక దినం నిద్ర చేసి
6: మేరా నా ముస్తఫా హై మనసులో అనుకుంటే మై తాళ్ళా పురుదు తూర్ సే ఆయా హు అందుగాని ఇక్కడ మై హర్ మహీనే మే బాబా కే దర్శన్ కే లియే ఆతా హి రహతా హు ఫిర్ భీ బార్ బార్ ఆనే కో मैं बाबा के दर्शन के लिए आता ही रहता हूँ, फिर भी बार बार आने को मन करता है।
0: और ये हैं श्रीमती रत्नम्मा।
7: रत्नम्मा गुड़ूर नंटी मको कोनी कष्टाल पाले वचन।
8: मेरा नाम रत्नम्मा है, गुड़ूर से आई हूँ। मेरे शौहर को नौकरी से निकाल दिया गया था, हम बाबा के पैर पड़े, अब तो फिर उन्हें नौकरी मिल ही गई है।
9: तुम भद्रे कितना सुंदर और महत्वपूर्ण है यह धार्मिक स्थल, दो जीवन धाराओं का यह पूर्व संगम।
10: हाँ तूने ठीक कहा, मेरा नारा है मानवीय एकता। मेरे तीरों पर द्वितीय काशी यानी कि दक्षिण काशी अलमपुरम भी है, जो विष्णु के अवतार परशुराम की माँ रेणुका देवी के मंदिर के लिए सुविख्यात है। यहाँ पर इतिहास से संबंधित बहुत सारे शिलालेख मेरी सफलता के प्रतीक तुम्हें मिलेंगे। अपनी सफलता का गर्व है मुझे, मेरी तपस्या है निस्वार्थ सेवा। हाँ तपस्या। आप दोनों ने कभी योगी राघवेंद्र स्वामी के बारे में सुना है?
11: हाँ हाँ, ये तो वही महापुरुष है ना जो महाभक्त प्रह्लाद के अवतार माने जाते हैं। प्रह्लाद की तपोभूमि उनकी यज्ञ भूमि थी।
10: हाँ वही भूमि जो मंत्रालयम कहलाती है।

0: कर्नूल जिला आदविनी तालुक से 52 किलोमीटर की दूरी पर तुंगभद्रा के किनारों पर बसा मंत्रालयम पुण्य क्षेत्र। यहाँ पर सभी धर्मावलंबी स्वामी जी की समाधि वृंदावन के दर्शन के लिए आते रहते हैं। कहा जाता है कि महाभक्त शिरोमणि राघवेंद्र स्वामी समाधि ही में से अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और पूरा करते हैं भी। स्वामी जी की समाधि की एक और विशेषता यह है कि यह भूमि उस समय के आदवेनी नवाब सिद्दीक मसूद खान की भेंट थी।
1: मेरी यात्रा अब मुक्ति की तरफ। संगमेश्वर नामक क्षेत्र पर कृष्णा नदी में मेरा सम्मेलन। मुक्ति की ओर चलते चलते आखिरी बार फिर एक बांध सुंकेसला में बंध कर करीब 3 लाख एकड़ के लिए सिंचाई की सुविधा देती हूँ।
0: अरे वाह, एक कपूर जैसे, सुगंध के वृक्ष जैसे बारंबार लोक कल्याण के लिए तुम्हारा यह आत्मसमर्पण।
1: हम नदियों का जीवन ही मानव सेवा के लिए है। ग्राम, नगर और राज्य की सीमाओं को पार कर भारतीय एकात्मता, वसुधैव कुटुंबकम की भावना की व्याप्ति करना हमारा जीवन लक्ष्य है। कल, आज

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि भगवान शिव शंकर द्वारा अपनी क्रोधाग्नि समुद्र में डाले जाने पर दैत्य जलंधर की उत्पत्ति हुई। शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में जलंधर शीघ्र ही दैत्यराज बन बैठा। वो इतना बड़ा धर्म अनुयायी था कि स्वयं शिवजी ने उसे मारने से इनकार कर दिया। जलंधर ने युद्ध में विष्णु जी को परास्त कर उन्हें लक्ष्मी जी समेत अपना अतिथि बना लिया। नारद मुनि ने जलंधर का धर्म भ्रष्ट करने के उद्देश्य से उसके मन में देवी पार्वती के प्रति आसक्ति पैदा की। बुद्धि भ्रष्ट जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर शिवजी के पास भेजा। प्रस्तुत है आगे की कथा, जिसके रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाभाग सूत जी, प्रतीत होता है अवश्य ही कोई रोचक घटना घटने जा रही है।
2: हाँ विप्रवर शौनक जी, एक तो महादेवी पार्वती के प्रति किसी दैत्य की आसक्ति और फिर राहु का दूत बनकर आना,

0: वो राहु जो अमृत से वंचित होने के कारण पहले ही देवताओं से रुष्ट था। फिर क्या हुआ सूत जी?
1: जलंधर की आज्ञा से लैस देवताओं के पूर्व कृत्यों का प्रतिशोध लेने की भावना से परिपूर्ण राहु कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा।
2: अरे ये कौन उद्दंड है, कैसे प्रभु के सभा भवन में घुसा चला जा रहा है?
3: रुको, कौन हो तुम? ऐसे बिना आज्ञा भवन में कैसे प्रवेश कर रहे हो?
0: अरे वृषभ, तू मुझे नहीं पहचानता? मैं महादैत्यराज जलंधर का दूत राहु हूं। मुझे कहीं आने जाने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरा मार्ग छोड़।
3: नहीं नहीं, तुम ऐसे भीतर नहीं जा सकते।
0: रोक सके तो रोक ले मेरा मार्ग।
3: शिवगणों, इस दूत को बंदी बना लो।
0: मुझे राहु को बंदी बनाएंगे? हो गए ना सब धराशायी। भीतर चलता हूं। देवों के भी देव शिव को मेरा, दैत्यराज जलंधर के दूत राहु का प्रणाम। परम पिता तथा श्री विष्णु हरे को भी मेरा प्रणाम।
4: आओ राहु, तो इस बार तुम जलंधर के दूत बनकर आए हो, मंतव्य बताओ राहु।
0: मेरे स्वामी जलंधर के पराक्रम तथा ऐश्वर्य से सभी परिचित हैं। संपूर्ण सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उनके पास ना हो। बस उन्हें आवश्यकता है तो मात्र एक ही वस्तु की।
4: कहो राहु।
0: आपकी भार्या सर्वांग सुंदरी पार्वती की।
4: क्या
0: जी? आप उन्हें मेरे स्वामी को उपहार स्वरूप दे दें।
4: राहु, प्रथम बात तो यह है कि देवी पार्वती कोई वस्तु नहीं है, वो हमारी पत्नी है, और पत्नी किसी के मांगने पर भी उपहार में नहीं दी जा सकती है।
0: परंतु छीनी तो जा सकती है।
4: पति पत्नी का संबंध आजीवन का होता है। मात्र मृत्यु ही पति को पत्नी से और पत्नी को पति से छीन सकती है। क्या तुम्हारे स्वामी जलंधर ये भूल गए कि हम मृत्यु से परे हैं?
0: मृत्यु से परे तो मेरे स्वामी जलंधर भी हैं देव। उनकी धर्म परायणता मृत्यु के विरुद्ध उनका कवच है, जिसे आप भी नहीं भेद सकते।
4: क्या तुम्हारा धर्म परायण स्वामी ये नहीं जानता कि किसी पर स्त्री की कल्पना मात्र से ही धर्म क्षीण हो जाता है? वो तो पर स्त्री की मांग कर रहा है।
0: वो मांग नहीं कर रहे हैं, आपको आदेश दे रहे हैं।
4: आदेश? आदेश? शिव को आदेश।
5: अरे कमलनयन, महाप्रभु ने अपनी एड़ी से धरती फोड़कर ये किस विकराल जीव को उत्पन्न किया है? इसका मुख तो सिंह के समान है।
6: विधात, मानो दूसरा नृसिंह पैदा हो गया हो।
7: आदेश महाप्रभु।
4: स्वकीर्तिमुख, इस राहु का भक्षण करो।
8: नंदीश्वर, देखो तो राहु कैसा भैसे इधर उधर भाग रहा है।
9: हाँ, सुकीर्ति मुख ने उसकी ग्रीवा पकड़ ली है।
8: हाँ। रक्षा रक्षा, मैं एक दूत हूँ, दूत को कुछ भी कहने का

0: अभय दान प्राप्त होता है। ये मर्यादा आप ही द्वारा स्थापित की गई है। देवों के देव, रक्षा रक्षा।
1: श्रुति विमुख, छोड़ दो इस दुष्ट प्राणी को। जो क्या महादेव, स्वकीर्तिमुख, हम तुम्हारे आदेश पालन से प्रसन्न हुए। आज से तुम इसी नाम से प्रसिद्ध होगे और हमारे द्वार पर स्थित रहोगे। जैसे हम पूज्य हैं, तुम भी पूज्य होगे।
2: मैं धन्य हुआ देवाधिदेव।
1: हमने तुमको मुक्त किया राहु। हम आज्ञा पालकों से प्रसन्न रहते हैं। तुम भी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन ही कर रहे थे। दूत का यही कार्य होता है, निर्भय और स्पष्ट रूप से अपने स्वामी का उद्देश्य बताना।
0: जी महादेव।
1: परंतु दूत का कार्य यह भी होता है कि वो अपने स्वामी को भी दूसरी ओर का संदेश स्पष्ट शब्दों में दे।
0: देवाधिदेव, आपका संदेश क्या है?
1: जाओ, कह दो अपने स्वामी जलंधर से, हमें उसकी मांग स्वीकार नहीं है। उससे जो संभव बन पड़े वो चेष्टा कर ले, हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे।
0: जो आज्ञा।
1: नंदीश्वर।
3: आज्ञा महाप्रभो।
1: हमारे वीर पुत्रों गणेश और कार्तिकेय, वीरभद्र तथा महाकाली के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान हो।
4: महादेव शिव शंकर की
5: जय।
4: महादेव शिव शंकर की
5: जय।
6: विष्णु, अरे ये क्या, जलंधर ने पुत्र कार्तिकेय को अपने अस्त्र वार से मूर्छित कर दिया है।
7: अरे विदात, क्रोध में आकर महाप्रभो ने जलंधर पर वार किया है, परंतु जलंधर पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ।
6: ये मुनि नारद जलंधर के पास क्यों जा रहे हैं?
8: नारायण नारायण नारायण। दैत्यराज, शिव जी के प्रहारों से तुम आहत हो गए हो।
1: हाँ।
8: मुझे लगता है तुम्हारा कुछ विश्राम कर लेना आवश्यक है।
9: परंतु युद्ध कैसे रोका जा सकता है मुने नारद?
8: नारायण नारायण, तुम मायावी हो। अपनी गंधर्वी माया से युद्ध स्थल को मनोरंजन स्थल में परिवर्तित कर दो, सब मोहित हो उठेंगे और युद्ध रुक जाएगा।
9: आपका सुझाव उत्तम है।
8: नारायण नारायण।

0: है? अरे विदात, ये क्या? सभी सभी दैत्य कहाँ लुप्त हो गए? हा? उनके स्थान पर गंधर्व अप्सराएं तथा किन्नर कैसे नर्तन करने लगे? हाँ विदात, स्वयं देवाधिदेव ने युद्ध समाप्त कर दिया है, वे भी मोहित से नर्तन देखने में मग्न हो गए हैं।
1: ये अवश्य किसी की मायावी शक्ति का प्रभाव है। भारत मुने जलंधर से क्या वार्तालाप कर रहे हैं?
0: संभवतः वो देवताओं की विजय प्रशस्त करने के लिए कोई प्रपंच रच रहे हैं।
2: नारायण नारायण, दैत्य राज जलंधर, सभी देवता नृत्य गान में मग्न हैं। यही समय है तुम शिव का रूप धारण करके पार्वती का अपहरण करके ले आओ। हाँ?
3: परंतु इससे क्या होगा मुने नारद?
2: नारायण नारायण, जलंधर।

0: शिव पत्नी जब तुम्हारे पास होंगी तो उन्हें मुक्त करने के लिए तुम शिवजी से कुछ भी मांग सकते हो, अमरत्व भी। और हाँ, और फिर दैत्यराज, देवी पार्वती को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही तो तुम ये युद्ध कर रहे हो ना?
1: उस सुंदरी का वरण करने की इच्छा क्षण प्रतीक्षण में तीव्र होती जा रही है मुने नारद।
0: नारायण नारायण, तो जाओ, तुरंत जाओ। इस समय देवी पार्वती की रक्षा हेतु कोई नहीं है। हाँ?
1: जो आज्ञा नारद मुने।
0: नारायण नारायण।
2: पार्वती, देवी पार्वती।
3: अरे देवाधिदेव तो आ भी गए। मुख्य तेज से प्रतीत हो रहा है कि इन्हें विजयश्री प्राप्त हुई है। स्वागत है स्वामी, विजयश्री पर आपका अभिनंदन है।
2: पार्वती, हमें भला कौन पराजित कर सकता है? वो कथित दैत्यराज जलंधर तो हमारे एक मुष्टि प्रहार से ही भूमि में समा गया।
3: ये तो देवाधिदेव की भाषा नहीं है। उन्होंने कभी अपने किसी कृत्य पर इतना अभिमान नहीं किया।
2: किन विचारों में लीन हो गई पार्वती? अपने विजयी पति का आलिंगन नहीं करोगी?
3: ये महाप्रभु हो ही नहीं सकते। ये अवश्य किसी की माया है।
2: प्रिय, तुम मौन क्यों हो? आओ, हमारे समीप आओ।
3: देवाधिदेव, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, अन्य देवगण तथा आपके अपने गण कहाँ हैं?
2: वे हमारी विजय का आनंद मना रहे हैं।
3: ये तो कदापि महादेव की भाषा नहीं है। वे आनंद के स्थान पर उत्सव कहते हैं। हे छली, हम जान गए हैं तू महाप्रभु की परछाई भी नहीं हो सकता। कौन है तू? अपने असली रूप में आ।
1: बहुत बहुत चतुर हो तुम पार्वती, पहचान ही लिया कि हम शिव नहीं हैं।
3: अरे मूर्ख जलंधर, एक पतिव्रता गंध मात्र से अपने पति को पहचान लेती है। तूने भ्रमित करने का प्रयास भी किया तो किसे? सतीत्व की परिभाषा को?
1: इतने भारी शब्दों का अर्थ हम नहीं जानते पार्वती। हम तो मात्र इतना जानते हैं कि पुरुष शक्ति के समक्ष स्त्री उतनी ही असहाय होती है जितना कि एक मेमना सिंह के समक्ष होता है।
3: अच्छा, अरे दुर्बुद्धि, तो तू ये समझता है कि अकेली स्त्री असहाय होती है? तो देख इस अकेली असहाय स्त्री का चमत्कार।
4: अरे ये कहाँ गई? कहाँ गई पार्वती? अरे कहाँ विलुप्त हो गई पार्वती? ये तो अनर्थ हो गया। नारद ने मुझे भ्रमित कर मुझे क्या करवा डाला और मैं मूर्ख राज शुक्राचार्य के बताए धर्म मार्ग को छोड़कर ये क्या कर बैठा? मुझे महादेवी से क्षमा याचना करनी होगी, क्षमा याचना करनी होगी। परंतु वे गई कहां होगी? कहां गई होगी महादेवी? महादेवी कहाँ गई होगी? महादेवी!

0: अरे महादेवी पार्वती, आप यहाँ युद्ध स्थल में?
1: ब्रह्मदेव, जब कोई असुर अपने माया जाल से युद्ध स्थल को क्रीड़ागार में परिवर्तित कर डाले तथा अपनी अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करे

0: तो देवी को युद्ध स्थल में उतरना ही पड़ता है।
1: देवी, आप क्रोधित ना हो, शांत हो जाएं। ये तो देवाधिदेव द्वारा निर्धारित काल चक्र की ही गति है। इसे रोकना स्वयं मृत्यु को आमंत्रित करना है। आप आदेश दें, जलंधर को कैसे दंडित किया जाए?
0: विष्णु हरे, असुर जलंधर ने मेरे स्वामी का रूप धारण करके मेरे शील भंग का प्रयास किया है। चाहिए आप उसकी पत्नी वृंदा का शील भंग कीजिए।
1: महादेवी, आपने आपने ये क्या आज्ञा दे डाली मुझे?
0: श्री विष्णु, देवाधिदेव ने आपको जन्म दिया है, वे आपके पिता हुए, मैं उनकी पत्नी हूँ। इस नाते मैं आपकी माता स्वरूप हुई। चाहिए माता की आज्ञा का पालन कीजिए।
1: परंतु माते, मेरा धर्म?
2: विष्णुदेव, माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही संतान का सबसे बड़ा धर्म है। माता की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र गणेश ने तो अपना सिर तक कटवा दिया था।
1: हाँ? ये क्या ब्रह्मदेव, वेदों और धर्म के ज्ञाता होकर भी आप मुझे ये घृणित कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं?
2: जलंधर का अंत जनकल्याण का कार्य है, यही आपके माता पिता की अभिलाषा है। और जनकल्याण हेतु किया गया कोई भी कार्य कुकृत्य नहीं हो सकता।
0: श्री विष्णु, ये एक पत्नी का प्रतिशोध नहीं है, एक पत्नी का पतिव्रत धर्म है, जलंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म, जो मेरे स्वामी के विजय के मार्ग में अवरोध बना हुआ है। देवताओं की विजय के लिए उसका ये सुरक्षा कवच तोड़ा जाना आवश्यक है। जाइए, हमारे आदेश का पालन कीजिए।
1: देवी, परमपिता, महादेवी तो आदेश देकर लुप्त हो गईं, परंतु मेरा हृदय, मेरा मानस ऐसा करना स्वीकार नहीं कर पा रहा है।
2: देवाज्ञा की पूर्ति भी हमारा धर्म है श्रीहरि।
1: स्वप्न, हाँ, स्वप्न को माध्यम बनाता हूं।
3: ये कैसा मादक स्पर्श है, मेरा अंग अंग रोमांचित हो उठा है। क्या स्वामी लौट आए हैं? अरे, मेरे नेत्र क्यों नहीं खुल रहे? परंतु आश्चर्य की बात है, मैं बंद नेत्रों से भी स्वामी जलंधर के दर्शन कर रही हूँ। वे मुस्कुराते हुए मुझे आलिंगन बद्ध करने को बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, यह तो मेरे स्वामी का रूप बदल रहा है। कौन है यह दिव्य पुरुष, और मैं क्यों आकृष्ट हुई जा रही हूं इनकी ओर? नहीं नहीं, इस कल्पना मात्र से ही मेरा पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हो गया है। स्वामी स्वामी जलंधर, मैं भ्रष्ट हो गई। हाँ, ये क्या, ये तो स्वप्न था। स्वप्न में ही सही, मैं भ्रष्ट हो गई। कहीं ये किसी अनिष्ट का संकेत तो नहीं? चलूं बाहर, किसी से पूछूं। ये क्या, भवन के बाहर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। किससे पूछूं? हाँ, वो दो मुनि चले आ रहे हैं, उनसे पूछती हूँ। मुनिवर, रक्षा, मेरी रक्षा कीजिए इन राक्षसों से। मुनिवर,
4: लीजिए। मुनिवर की हुंकार से राक्षस भाग गए, परंतु देवी, ये क्या, आपने भयभीत होकर मुनिवर का बाहु क्यों पकड़ लिया?

0: वास्तव में अनर्थ हो गया। पहले स्वप्न में पर पुरुष का स्पर्श और अब मूर्खतावश इन पर पुरुष मुनि का स्पर्श, मैं क्या करूं?
1: क्या बात है देवी, आप इतनी उद्विग्न क्यों हैं?
0: मुनिवर, एक विभत्स स्वप्न देखकर अपने स्वामी जलंधर का कुशल क्षेम जानने बाहर निकली थी और मुझसे ये पाप हो गया। मैंने पर पुरुष को वास्तव में छू लिया। अरे अरे, यही मुनि तो दिव्य पुरुष के रूप में मेरे स्वप्न में आए थे। ये क्या छलावा है? आप दोनों कौन हैं? मेरे पति का कुशल क्षेम बताइए। मुनिवर की हुंकार पर ये दो वानर कैसे उपस्थित हो गए? मुनि उन्हें मौन भाषा में क्या आदेश दे रहे हैं? वानर तो आकाश में उड़ गए। आप बोलते क्यों नहीं मुनि श्रेष्ठ, ये क्या हो रहा है?
1: देवी, मुनिवर मौनी बाबा हैं। क्या हो रहा है ये अभी स्पष्ट हो जाएगा।
0: नहीं, ये वानर तो मेरे पति जलंधर का कटा हुआ शीर्ष लेकर आए हैं। मैं जानती थी कि मेरा पतिव्रत धर्म भंग होते ही मेरे पति की शक्ति क्षीण पड़ जाएगी, शिव के हाथों उनका वध हो जाएगा। अरे, कौन हो तुम दोनों मुनि? ये क्या माया रची है?
2: देवी वृंदा, मैं विष्णु हूँ तथा देवी पार्वती के आदेश से ही ये माया रची गई थी।
0: महादेवी के आदेश पर? परंतु क्यों?
2: आपके पति जलंधर ने कामवश महादेवी के शील का अपमान करने का प्रयास किया था।
0: एक पति के कुकृत्य का दंड उसकी पत्नी को क्यों?
3: वृंदा, देवाधिदेव के हाथों मृत्यु पाकर तुम्हारे पति के कुकृत्य का फल ही उसे मिला है।
0: परंतु महादेवी, इस सब के लिए मेरा शील भंग करने की क्या आवश्यकता थी?
3: नहीं वृंदे, तुम अब भी उतनी ही पवित्र हो जितनी पहले थी। किसी ने तुम्हारा स्पर्श तक नहीं किया है।
0: परंतु मैंने मुनि वेश में श्री विष्णु का स्पर्श किया, स्वप्न में उनकी ओर आकृष्ट हुई।
4: पुत्री वृंदे, वो मात्र तुम्हारी मानसिक स्थिति ही थी, उसे भी हमारी विवशता के कारण उत्पन्न किया गया था। शरीर से तुम अब भी स्वच्छ तथा निर्मल हो।
0: क्या परमेश्वर भी विवश होते हैं?
4: अवश्य होते हैं। हमारी पहली विवशता होती है भक्तों की रक्षा करना, उन्हें सुखी बनाना, और इस कारण ही हम अपनी प्रजा को दुख पहुंचाने वालों का अंत करने को विवश हो जाते हैं।
5: और देवी वृंदा, हमारी दूसरी व्यवस्था होती है अपने ही वरदानी के आतंक को समाप्त करने के लिए अपने ही दिए वरदान की काट करना।
0: परमपिता, मेरा आपसे एक अनुरोध है।
5: कहो वृंदे।
0: मेरे पति की अंत्येष्टि का आयोजन आप कीजिए ताकि उनकी आत्मा पवित्र हो सके।
5: तथास्तु वृंदा, शिवगणों व्यवस्था करो।
6: जो आज्ञा देव।
5: दैत्यराज जलंधर का शरीर आदर पूर्वक चिता पर रख दो। अब अग्नि प्रज्वलित करो।
0: हे देवगण, किसी भी कारण से, किसी भी उपाय से ही सही, श्री विष्णु हरि ने एक पतिव्रता को मानसिक विक्षोभ पहुंचाया है। वे उसके पति की मृत्यु का निमित्त बने हैं। अतः श्री विष्णु, मैं वृंदा आपको शाप देती हूँ। अपनी मायावी शक्ति से जो दो राक्षस आपने मुझे दिखाए थे, वे किसी समय आपकी पत्नी का हरण करेंगे। पत्नी विरह में दुखी आपको वानरों की सहायता लेनी होगी, और जो मुनि आपके साथ था, वे आपका भ्राता बनकर आपके साथ वन

0: ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਓਮ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਓਮ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਓਮ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਏ।
1: महामुनि शौनक जी, ऐसा श्राप देकर वृंदा ने अपनी देहाहुति दे डाली और उसका ये श्राप श्री विष्णु भगवान के राम रूप में अवतार लेने के समय पूर्ण भी हुआ।
2: महाभाग सूत जी, जलंधर की मृत्यु से शिव चालीसा का एक और दोहा भी तो पूर्ण हुआ।
1: वो कौन सा शौनक जी?
2: आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा।
1: हाँ महाज्ञानी शौनक जी, शिव जी की आराधना में ग्रंथ के ग्रंथ लिखे और बांचे गए हैं। कितने ही लेखकों भक्तों ने आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक शिव महिमा का गुणगान अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से किया है।
2: महाभाग सूत जी, ये तो आप उचित ही कहते हैं। ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो शिव महिमा से प्रभावित ना हुआ हो। अब आगे की शिव महिमा भी तो सुनाइए।
1: अवश्य सुनाऊंगा शौनक जी, परंतु तनिक विश्राम के पश्चात।

क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे,

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। इस वेले शाम दे 4:30 होने वाले ने आहुन तुहानू लै चलदे हां श्री दरबार साहिब अमृतसर जिथों तुसी शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सरवण करोगे।

हे बिन पानी के मीन मरे हो रे बिन पानी के मीन मरे और चिंता में

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

गंगा पार होने के पश्चात भगवान प्रसन्न भाव से केवट को विदा कर भारद्वाज आश्रम संगम नगरी पहुंचते हैं, जहां राम सीता लक्ष्मण व भक्तगण स्नान ध्यान पूजन भजन और कीर्तन कर रहे हैं।

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजाकर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

इत्यादि। अर्थात ते महाशक्ती नारायणी ए विलक्षण ये महाशक्ति स्वरूप ब्रह्मा वगैरे देव पण जाणी शकता नथी, तेथी ते अग्निया कहवायश। ज्यानो अंत छेडूज मळतो नथी, तेथी ते अंताश। ज्यानो लक्ष जोई शकातो नथी, तेथी अलक्ष्याश। ज्यानो जन्म समजवामा आवतो नथी, तेथी ते अजाश। ए एकली सर्वत्र व्याप्त छे, तेथी एका। अने विश्वमा अनेक रूप छे, तेथी अनेका कहवाय। परांबा राजराजेश्वरी अनंतकोटि ब्रह्मांड नायिका सूर्यमंडल अंतर्गता जगद्बीजा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी त्रिगुणा परांबा ने अमो नमन करीश। परांबा त्रैलोक्यनी अधिष्ठात्री महाशक्ति भगवती दुर्गा एनु नाम लेता अनु ध्यान मंत्र उपासको ना हृदय में आ रीते स्फुरित थाय। मंत्र श्लोक

पुत्रीं यशस्विनीं। अर्थात वृष बळरूप विराजिला, त्रिशूल ने धारण करणारा, जमना मुगुटमा अर्धचंद्रशे एवा यशस्विनी, शैलपुत्री हिमालय तनयाने मारा मनोरथनी सिद्धिने माटे वंदन करूं छू। जो कि आ महादेवी सर्व जगतना अधीश्वरी छे, तो पण हिमालयनी तपश्चर्या अने प्रार्थनाथी प्रसन्न थई एने त्यां पुत्री रूपे प्रगट थया।

दक्ष यज्ञ विनाशिनी। अर्थ जोई ये दुर्गा माता सती साध्वी भगवान सदाशिव ऊपर प्रीति राखनारा भवानी संसार बंधन माथी मुक्त करनारा आर्या दुर्गा जय अपावनारा त्रण नेत्रवाणा अद्या त्रिशूल धारिणी साथेश पिनाक धनुष्य धारण करनार चित्रा मनोहर स्वरूप वाला प्रचंड स्वर्थी घंटानाद करनारा महातपश्चर्या नु आचरण करनारा मनन शक्ति रूप बोध शक्ति रूप एवं अहंतानो आश्रय चित्त रूपा चिता चेतना रूपा चेति शक्ति दुर्गा देवी चैतन्य शक्ति चेति शक्ति दुर्गा देवी। तो साथेश सर्व मंत्रों जमनु स्वरूप छेते सत स्वरूप अने आनंदमय आनंद स्वरूप वाला छे एना स्वरूप नो कहे अंत नथी अने એ સૌને ઉત્પન્ન કરનાર છે એથી એ ભાવિની છે એ કલ્યાણ રૂપ છે એ ભવ્યા છે જેમનાથી ચડિયાતું બીજું કોઈ ભવ્ય તત્વ નથી એથી અભવ્યા પણ કહેવાય છે સદૈવ સંચારશીલ છે એથી એ દિવ્ય એવા દુર્ગા માતાને અમે પ્રણામ કરીએ છીએ। तो पछी आगर

सज्जन दे गल लगियां लगियां पैगी राती अंधेरी सज्जन दे गल लगियां लगियां पैगी राती अंधेरी ओ जान भी दे हुण सोहणी।

सज्जन दे गल लगियां लगियां पैगी राती अंधेरी सज्जन दे गल लगियां लगियां पैगी राती अंधेरी ओ जान भी दे हुण सोहणिया।

मानव और दानवों के इष्ट देव करुणामयी भगवान सदाशिव ऐसे महादानी और वरदानी हैं कि जिनकी स्तुति संपूर्ण करने के लिए अनंत जन्म भी कम पड़ जाएंगे। किंतु यह भी सत्य है कि भगवान शंभुनाथ की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्री शिव चालीसा सर्वोच्च और शुभ फलदायी माना गया है। श्री शिव चालीसा का पाठ सुनने वालों के लिए उतना ही कल्याणकारी है जितना कि पाठ करने वालों के लिए। इसका नियमित पाठ करने से सभी प्रकार के मनोरथ जैसे घर में सुख शांति धन यश वैभव में वृद्धि होने के साथ साथ सभी प्रकार के रोगों और दोषों का सर्वनाश भी होता है। जिस प्रकार भगवान शिव किसी एक जाति या धर्म विशेष के नहीं है, वो तो सभी के इष्ट हैं। ठीक उसी प्रकार श्री शिव चालीसा की स्तुति का समान रूप से अधिकार इस चराचर जगत के सभी मानवों को है। मन के पावन भाव से की गई भक्ति से हर्षाने वाले श्री शंभुनाथ को शिव भक्तों की ओर से समर्पित है श्री शिव चालीसा।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।